से क्या सोचा भी बहुत था, लेकिन जाने क्या क्या से क्या सोचा भी बहुत था, लेकिन जाने क्या क्या